0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
3: FM247365
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: महरारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
3: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत और जवाबित लागू हैं।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी इयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
5: एंड HBL फ्री रमता, जहां खाब वहां HBL।

0: 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
3: एंड HBL फ्री रमकाम जहां खाब वहां HBL

अच्छा जहर वेग के पीता देखी पीता इश्क सोच के कीता देखी कीता दिल दे के दिल लैंड दी आस रखी उहे बुलिया।

0: बजा।
1: BTCL Flash Fiber Azadi Offer लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं Free Shock Android TV Box worth ₹15,000, Free 100 Mbps Internet Speed 6 महीने के लिए, 500 All Net Minutes और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। Call 1218 या UPTCL App डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। Terms and Conditions Apply। शर्त जवाबित लागू हैं।
2: This program is brought to you by
3: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने अपना कुछ तीन बार मौत देखे
5: टाइम से ऐसे ही के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
10: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: This program is brought to you by
1: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी ईयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स। Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps Internet Speed 6 mahine ke liye. 500 AllNet Minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू हैं।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: दर्जा।
1: BTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hain.
2: This program is brought to you by
3: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
2: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: is facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800 55 055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: This is

0: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिंसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज़ ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारते इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाय फ्रेंड्स, I am Mikal Zulfikar, and today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औक़ात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں, سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اسے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: FM 24/7/365

वेलकम बैक आएंगे सुनिए आप सबको सावन की भीगी रातों में। ट्रिब्यूट टू नुसरत फतेह अली साहब, क्या बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। और संजू कह रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, दिन बखैर आफियत की अनगिनत दुआएं, खुश आमदीद, कैसे हैं, मिजाज हैं। अच्छा भाई, 100 की ट्रांसमिशन के हवाले से बात कर रही है, इंशाल्लाह जल्द सही हो जाएगी, डोंट वरी डोंट वरी, यानी कि समझ रहे हैं ना। तो बात करते हैं जनाब कुछ सवाल और जवाब की। और आज क्योंकि मौसम ऐसा जबरदस्त हो रहा है, तो मौसम के हवाले से ही बात करते हैं। सुहाना मौसम, बारिश का मौसम, ख्वाब में बारिश को देखना किस चीज की अलामत है, ये बताएं। हैं जी ते हैं जी। तो ख्वाब में बारिश को देखना किस चीज की अलामत है, ये तो हो गया आज का सवाल। बाकी मैसेजेस करेंगे आपके चाय स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे 3636 पर। एक सवाल और भी है, अब वो बड़ा थोड़ा सा तल्ख सा सवाल है, मगर हमारे जिंदगी के साथ बहुत सारी तल्ख बातें, तल्ख हकीकत, तल्ख लोग, तल्ख मोहब्बतें, ये तमाम चीजें साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसा है कि नहीं है। तो इस हवाले से भी आपसे एक सवाल है कि कोई तल्ख बात जो वाकई में आपके दिल पर लगी हो, यानी कि जोर से ठा करके, उस हवाले से भी अगर कुछ बताना चाहें कि भाई हाँ भाई ये हुआ था। अब तल्ख हकीकत में ऐसी, अल्लाह ताला ना किसी के साथ ऐसा हो, एक्सीडेंट हो गया, नई बाइक खरीद के लाए या नई गाड़ी खरीद के लाए और ठुक गए, चाहे आपकी गलती हो या दूसरे वाले दूसरे इंसान की, मगर यानी कि समझ रहे ना, तल्ख हकीकत तो है। हाय अल्लाह जी, फिर क्या होगा, इस तरह तो होगा। इस तरह के कामों में हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर आ गई हैं और कह रही हैं सलाम, कैसे हैं आप। वालिदे मोहतरम को, संजू को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। गाना उनको बहुत पसंद आया भाई।

0: संजू कह रही हैं और पहला सॉन्ग मौसम के हिसाब से बेहतरीन था। हमारी तरफ से मौसम बहुत हसीन है, हमारी तरफ मौसम बड़ा हसीन है। हमने समझा कि आपके दिल का मौसम बहुत हसीन है। अल्लाह ताला वो भी हमेशा हसीन रखे, आमीन सुमीन माशाल्लाह। फिलहाल तो जनाब पूरे कराची का मौसम बड़ा हसीन है और हसीन मौसम के साथ साथ बहुत सारी यादें भी इंसान की वाबस्ता होती हैं, उनका भी अगर जिक्र करना चाहें तो कोई मजाका नहीं भाई। ये हुआ था हमारे साथ,
1: वो मिले थे हमें इस मौसम में, बस देखा और लट्टू हो गए।
0: इस तरह की बात होती है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सब जमा होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हमारे समी साहब आ गए हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? आपको और तमाम लिसनर्स को उन्होंने सलाम कहा है। जॉब पर हूँ, 2 बजे ऑफ कर दूंगा। माशाल्लाह से इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि दिल कर रहा है आपसे मिलने आ जाऊं। मैं तो ये सोच रहा था इतना अच्छा मौसम हो रहा है घर ही जाना, ये ना हो कि मोटर बाइक जो ससुराल की तरह चली जाए। आज मैंने आपकी तरह किया, सुबह इसी जॉब पे आ गया बिना कुछ खाए, अब भूख लग रही है। अच्छा मेरी तरह इन्होंने किया कि बगैर कुछ खाए जो है वो जॉब पर चले गए। ये क्यों भाई, लेट उठे होगे ना? बार बार आपकी आवाज आ रही है और फिर जा रही है भाई। वो जाने वाली को इग्नोर करो और आने वाली को वेलकम करो, यानी कि समझ रहे हो ना। तो खैर गाने जो है वो कोशिश यही है कि मौसम के हवाले से ही या उससे मिलते जुलते चलाए। और कह रहे हैं जनाब एक गाना फटाफट प्ले कर दीजिए। बिल्कुल फटाफट प्ले करेंगे, डोंट वरी। और जनाब अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल है आपका? एफएम 100 की फैमिली को, आपको और एफएम 100 की फैमिली को सलाम। अकीद आए हुए हैं जनाब ये, और आवाज ठीक नहीं आ रही, सब जगह से यही आ रही है बात कि आवाज ठीक नहीं आ रही। इस तरह तो होता है वैसे, आवाज अगर सही ना आए इंसान को तो क्या होता है जरा बताइए। और कुछ तो ऐसा भी सीन होता है कि कुछ लोगों की आवाजें दिल भी करता है कि म्यूट हो जाए। है कि नहीं? चले जनाब इसी बात पर लेकर जाएंगे आपको एक ब्रेक की जानिब।

इसी बात पर हम लेकर जाते हैं जनाब आपको एक ट्रैक के जाने पर। ये ट्रैक हम स्पेशली डेडिकेट करेंगे अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब की जानिब से आप सबको, और उसके साथ साथ हमारे इरफान मेमन, मेमन कजन, सायरा मेमन, सलीम मेमन, इन सब की जानिब से भी, क्योंकि ये लोग सब करते हैं सज्जाद अली की फरमाइश। तो सज्जाद अली का गाना एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो, वो इतने याद आते हो कि मैं बता नहीं सकता। मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर। हमारी प्यारी सी बहन रानी भी आ गई हैं। रानी हुसैन कैसी हो? और कह रही है मौसम बहुत अच्छा है भैया, जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। संजू कहती हैं क्या की थी हैं? संजू कुछ कह रही हैं। अरे एक मिनट, बहुत कुछ कह रही है भाई। इंसान बहुत गहरा होता है, ये तो बात है भाई। इतना गहरा समंदर भी नहीं है जितना गहरा इंसान है। ये एक ही वक्त अपने दिल में न जाने कितने राज, दुख, दर्द और अपनी उम्र की कई दास्तानें छुपाए फिरता है। बुलंद कह कहों में, आंखों के किनारों में छुपी नमी को बहुत महारत से अंदर पीता है। हाय अल्लाह जी। हर लम्हा बदलते मौसम की जर्द में आकर कई रंग बदलता है। वाह वाह वाह। और उदास आंखों में दुनिया भर के जख्म कैद करके मुस्कुराता है। इंसान सच में बहुत गहरा होता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है संजू। और बारिशों के मौसम में दिल बहुत मचलता है। तेरे संग चलने को, तुझसे बात करने को, तेरी बात सुनने को दिल बहुत मचलता है। बारिशों के मौसम में मुझे ऐसा लगा कि उसका बन रहा है कुछ। खैर, बड़ा खूबसूरत अंदाज में कहती हैं कि बारिशों के मौसम में, बारिशों के मौसम में दिल बहुत मचलता है। तेरे संग चलने को, तुझसे बात करने को, तेरी बात सुनने को दिल बहुत मचलता है। दिल को कैसे समझाएं हमको जिंदगी भर, अब भीगना भी है तन्हा और तन्हा चलना है। दिल को कैसे समझाएं बारिशों के मौसम में, तुझको याद करना है। आतिफ सईद साहब ने का इंतखाब है ये, जो कि उन्होंने भेजा। बारिशों में ऐसा भी होता है, शेर व शायरी भी याद आ रही होती है, महबूब भी याद आ रहा होता है, दोस्त अहबाब भी याद आ रहे होते हैं। हर एक अपनी सोच के मुताबिक, दिल की धड़कनों के मुताबिक मिसिंग कर रहा होता है। और ऐसा मैंने बोला, बस जैसा सोचता है इंसान वैसा होता है। मेरे साथ भी आजकल बहुत ही बुरा हो रहा है। अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करे। अल्लाह पाक मुझे सब्र सुकून अता करे, इस आजमाइश से निकाल दे इलाही, आमीन। अल्लाह पाक मेरा घर, मेरी जन्नत को सलामत रखे, आमीन। सुम आमीन संजू। ढेरों बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए हमेशा। और आगे बढ़ते हैं। वकीत भाई, ओनली जॉब नेट पर कैसे सुन सकते हैं? मोबाइल हाथ में नहीं रख सकते, कैमरे की आंख देख रही। अच्छा, कहना ये चाह रहे हैं कि भाई मैं जॉब पर हूं और कैसे सुन लें? तो वकीद, अगर आप सुन रहे हैं तो जैसे अभी आप सुन रहे हैं उसी तरीके से आप इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। कोई तस्वीर वगैरह थोड़ी आ रही, हैंड फ्री लगा लो और, यानी कि समझ रहे हैं ना, इंतहाई आसान है भाई, आसान है। नौरीन बहना कुछ कह रही है, संजू मेरी प्यारी बहना को दुआ सलाम और सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा। अच्छा सा, बिल्कुल करेंगे और अभी करेंगे, कुछ ही देर में करेंगे। आपकी जानिब से और जरीन नूर की जानिब से, दोनों की जानिब से एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक संजू को हम डेडिकेट करेंगे। समी शेख कहते हैं, नदीम भाई मुझे लग रहा है माइक या फेडर का इश्यू हो रहा है, आवाज इसीलिए खराब आ रही है। खराब आ रही है भाई, ऐसा कोई नहीं है। अब इंजीनियर बनने की कोशिश मत करो, फेडर सही है, माइक सही है, एवरीथिंग इज ओके, जस्ट ट्रांसमिशन, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, बस वो भी सही हो जाएगा, ओके टेक हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। बारिशों के मौसम में हाय हाय हाय, ऐसे ऐसे मौसम में दिल एक और बात को बहुत करता है, पकौड़े बने हो यार, हाय हाय हाय हाय, या आलू वाले पराठे बने हो यार, और चटनी तीन चार किस्म की होनी चाहिए। अगर आप पकौड़े बना रहे हैं या आलू वाले पराठे बना रहे हैं, कटलेट्स बना रहे हैं अगर आप,
घर की बात कर रहा हूं मैं, रोल बना रहे हैं अगर आप तो इनके साथ जो है चटनियों का जो है सिलसिला है ना, मैं अपने हवाले से चटोरा हूं बहुत, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि एक तो जो है पुदीने के साथ जो है ना रायता जो है वो पुदीने का बना हो और उसमें अनारदाना जो है ना हल्का फुल्का अनारदाना भी हो, एक रायता बना हो जनाब गरम मसाले का और हरी चटनी, उफ अल्लाह जी, एक इमली की चटनी साथ में और एक लहसुन की चटनी जो लाल रंग की होती है, लाल मिर्चों के साथ बनती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना वो एक बेसन की रोटियां, ऐसे मौसम में ये तमाम चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मगर अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं फौरन से बेशतर एक ट्रैक की जानिब और ये ट्रैक जो है हम डेडिकेट कर रहे हैं जरीन नूर की जानिब से और नौरीन तौसीफ की जानिब से। संजू आपको एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। तो जनाब मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर। जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन ने थैंक्स कहा है सॉन्ग के लिए। और हमारे इनामुल हक भाई आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? आपके वाले साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आदाब कहा है, सलाम कहा है आंटी को, चाची को, कायनात को, कोमल को, रूसा को, संजीदा को और समी भाई को, सलीम भाई को, लाला को और सब सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, आदाब कहा है। हैं जी जी हैं जी। और इनामुल हक भाई कैसा लग रहा है? आप तो मनोड़ा में होते हैं, मतलब कराची के पूरे कराची का मौसम इतना जबरदस्त हो रहा है, तो यानी कि समझ रहे ना आप वहां का भी ओके ठीक होगा। और जनाब हमारी नौरीन बना भी आ गई है आखिरकार, कहती हैं कि उसने हमें पुकार के क्या कुछ नहीं कहा, उसने हमें पुकार के क्या कुछ नहीं कहा, पूछा जो क्या कहा तो कहा कुछ नहीं कहा। हाय हाय खुश हो रहा हूं कितना मैं इकरारे इश्क पर, खुश हो रहा हूं मैं कितना इकरारे इश्क पर, हालांकि उसने के सिवा कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने के अलावा कुछ नहीं कहा। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या याद आ रहा है भाई। हैं जी ते हैं जी। अच्छा भाई अभी एक और ट्रैक के जानिब जा रहे हैं हम, और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं। अरे ये कौन सा चल रही है भाई, इसको तो बंद करो। हाँ जी एक और बड़ा प्यारा सा ट्रैक, मेलो मेलो से ट्रैक, प्यारे प्यारे से ट्रैक आपको सुना रहा हूँ। और ये गाना भी अच्छा है, अभी हमने सुना ना सन नहर वाले पुल ते बुला के, तो मुझे दिमाग में ये वाला गाना आया। हैं जी जी हैं जी।

वेलकम बैक सुनियो चंदन मेरे मखणा ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा जनाब, एक ये चंद मेरे मखना आप लोगों ने गाना सुना है, बहुत ही पॉपुलर गाना, बताएं इसके ओरिजिनल सिंगर कौन है। इनाम लग कह रहे हैं जी जी बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, सॉन्ग लगा दें। तुम याद आते हो बारिश के मौसम, और अख्तर भाई को डेडिकेट कर दें। इनाम भाई क्या कह रहे हैं आप, यकीन मानिए समझ नहीं आ रही है, गाने की भी समझ में नहीं आई, और अख्तर भाई कौन हम यानी कि मैं, बताइएगा मुझे डेडिकेट कर रहे हैं। इस तरह से होता है, इस तरह के काम। और ये मौसम, जैसा कि अभी इनामुल हक साहब ने बताया कि किवाड़ी में जो है मौसम तो पूरे कराची में ही ओके टेक हुआ हुआ है, और कराची क्या नाम है किवाड़ी में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। वैसे तो पूरे कराची में ही हो रही है हल्की फुल्की बूंदाबांदी किसी किसी एरियाज में, इतना बड़ा कराची है भाई। तो ऐसे मौसम में अच्छे अच्छे गाने सुनने के साथ साथ अच्छे अच्छे खापे भी होने चाहिए, यानी कि खाने पीने के हवाले से बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज वैसे भी संडे है, छुट्टी का दिन है, और खाने पीने के हवाले से मैं शो के आगाज में ही बात करना शुरू कर देता हूँ, भाई नाश्ता क्या किया, हलवा पूरी ये वो, लेकिन पूरी कह रहा हूँ पूरी। और आप से अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैसा कि जिक्र किया पकौड़ों का, बेसन की रोटी। अच्छा, बेसन की रोटी मुख्तलिफ तरीकों से बनती है डिफरेंट घरों में, हमारे यहाँ जो बनती है उसमें बाकायदा प्याज हल्की फुल्की सब्जी जो है ना काट के, धनिया ये तमाम चीजें वो आटे में मिक्स होता है, और जब पकता है बेसन का पराठा, हाय हाय हाय हाय। और उसके साथ मैंने चटनियों का जिक्र किया, किसी के मुंह में पानी नहीं आया, किसी ने नहीं कहा हाय हाय नदीम भाई क्या बात कर रहे हैं, आज तो मैं अम्मी को यही कहूंगा, या बाजी को यही कहूंगा, या बेगम को यही कहूंगा, कोई बता ही नहीं रहा भाई। अच्छा, घर की जो खवातीन है अगर वो सुन रही हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेशन भरपूर तरीके से कर सकती हैं, जरूरी थोड़ी है यार जो आया हुआ है मर्द घर में पूरा हफ्ता जो काम करता है वो अपने मुंह से ही बोले यार ये आज ये पका दो, आप भी जरा कुछ अच्छा सा बनाकर उसके सामने पेश करें। हैं जी हैं जी, होता है ना इस तरह, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा, अलीमुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं अच्छा वाजिबुल एहतराम अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा मैसेज और सज्जाद अली का गाना चलाया, आपका शुक्रिया का मैसेज भी जरूर आता है यार। आज मेरे दिमाग में ना नसीम कुरैशी साहब आ रहे हैं, बहुत पता नहीं क्यों आ रहे हैं। नसीम साहब, नसीम अंकल कहाँ है यार अब, और उसके साथ साथ अरूसा भी, और मेरी चाची को तो मैं कॉल करूंगा, हमारी प्यारी सी आंटी भी सुन रही होंगी। आंटी कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगी। चले भाई इसी बात पर कोई गाने वाने की जानिब चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गाने की जानिब नहीं जा सकते, ये वाले गाने की जानिब भी नहीं जा सकते, ये वाले गाने की जानिब जा सकते हैं। ये छोटा सा गाना है और अच्छा है, जरा लाइट सा मेलो सा ट्रैक है, और होपफुली आपको पसंद आएगा। वैसे मतलब ज्यादा पुराना भी नहीं है, नया नया गाना है, एलो फड़ो।

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: 100 FM.
5: Chum chum chum, kitabe leke nikle hum. Ammi ne kaha na rukna tum. Roz roz aage badhte rahe hum.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको, और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने हो। हैप्पी आर्स में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक, और ये अल्ला गुला जारी हो सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। और सवाल मैंने आपसे ये किया कि ख्वाब में बारिश का बरसना किस चीज की अलामत है, जरा बता दो मुझे। दुरुस्त जवाब आए बहुत सारे, और अल्लाह की रहमत, बेसिकली अल्लाह की जो रहमत होती है ये इस चीज की अलामत है। अगर आप ख्वाब में बारिश को देख रहे हैं, इसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया। उसकी वजह ये है कि वक्त का पता नहीं चलता भाई, कब कहां हो जाए। और सही कहा भाई, मेरी अम्मी तो घर में ही जहांदा बनाती थी घर दुल्हन की तरह, अच्छा झंडा बनाती थी और घर दुल्हन की तरह सजाती थी, और खुशी से रात भर नींद नहीं आती थी, सुबह स्कूल जाकर परफॉर्म करना है और मेरी परफॉर्मेंस सब से अच्छी हो। जरीन नूर कह रही है ऐसा ही है जनाब, हमने अभी थोड़ा सा जायचा खेचा, खाका खेचा, सॉरी जायचा कह रहा हूँ, खाका खेचा, और उस हवाले से संजू आप क्या कहती हैं इस हवाले से जरा बताइएगा, हैं जी। और बहुत ही प्यारी सी नौरीन बहना और प्यारी जरीन नूर के लिए बहुत सारा प्यार और दुआएं संजू की जानिब से, और मेरे साथ भी आजकल बहुत ही बुरा हो रहा है। अच्छा ये तो हो गया था। नदीम, सामने वाले के लिए इंसान तब सोचे जब वो हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, बाजार वो सही है मगर अंदर से काट रखता है। हाँ ये बात भी बड़ी अच्छी की, ये तो मैंने आपको बताया है ये शो के आगाज में एक थोड़ी छोटी मोटी सी चर्चा इसी हवाले से की थी, मेरा ख्याल ये उस वक्त का मैसेज है। सामने वाले के दिल में क्या है ये अलग चीज है, आपके साथ वही होगा जो आप सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे इंशाल्लाह अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो फिर अल्लाह ना करे आपके साथ बुरा हो। अच्छा जी कुछ मसरूफियत है बड़े भैया की, यहाँ दावत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त की है, सलामत रहे शहजादे, आप भी सलामत रहे। दावतें चल रही हैं भाई, दावतें चल रही हैं, हाय हाय सो स्वीट रानी मेरी बहन, वो कह रही है शो सुनने सही तरह नहीं सुन पा रही, और मेरा ख्याल है समी भी जो है वो भी दाएं बाएं हो चुका है। चले खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो फिर अब मैं क्यों ना अपनी ही मर्जी के गाने आप लोगों को सुनाऊं। हां जी तो फिलहाल आपको थोड़े से मेलो से प्यारे से गाने सुनाते हैं, फिलहाल ये वाला सुनाते हैं आपको, एलो फड़ो।

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback or nay gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Like us on facebook.com/fm247365
5: FM 247365

वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको। वक्त कैसे फुर करके उड़ जाता है पता ही नहीं चलता है। और प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ कह रही हैं कि नदीम भाई मैं और तौसीफ साहब बहुत बड़ा झंडा बनाते थे, बहुत बड़े लोहे के पाइप लगाकर घर की सबसे ऊंची छत पर जाकर ऊंची जगह पर जाकर लगाते थे। यूनिवर्सिटी रोड के फ्लाईओवर पर बच्चों के साथ जाकर देखते थे। वाह क्या हसीन तरीन दिन थे। हाय अगस्त का महीना है और देखें मैंने 14 अगस्त की बात की तो सारे जितने भी जनरेशन एक्स के हैं जेन एक्स उनको अपना टाइम याद आ रहा है जी ते हैं जी। और अभी भी ये जोशो खरोश जो है वो बिल्कुल हो सकता है। ये कसूर बेसिकली वालिदैन का है जो कि अपने बच्चों को इस चीज से बावर नहीं करवाते और बोलते नहीं है, इनकरेज नहीं करते। कीजिए सबा आई हैं और कह रही हैं कि आरजे नदीम आपसे एक शिकायत है। हाय अल्लाह जी ना करें, दिल थाम लूं मैं, पहले दिल थाम लूं। आप मेरे मैसेजेस एसएमएस ठीक से रीड नहीं करते जिसका मुझे बहुत अफसोस है। सॉन्ग अच्छे हैं थैंक्स सबा। सबसे पहले बात तो यह है कि आपके मैसेज अभी भी मैंने बिल्कुल ठीक रीड किया है। कोई जे जबर पेश का फर्क आ जाए, गलती हो जाए, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा आपसे। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। गाने अच्छे लग रहे हैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी कि समझ रही है ना आप, हाँ समझा करें। और बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब। और ये गाना आपको अच्छा लगेगा मुझे पता है। कहाँ गया गाना, कोई और चल रहा है, चले जा रहा है। तो जनाब सज्जाद अली को ही शामिल करते हैं यार। हाय हाय हाय मजा आ जाता है इसकी आवाज सुनकर। गाने अच्छे बनाता है ये।

वेलकम बैक आएंगे जेठू कदीर रावी लंग जाए हयाची पंजाबी बन जाए ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको सबको पसंद आया होगा। अच्छा जनाब, अब जो है इजाजत चाहना है, साइन आउट करना है आपसे। आज मैंने आपसे एक सवाल बारिश के हवाले से किया कि बारान रहमत जो होती है या ख्वाब में बारिश को देखना किस चीज की अलामत है, तो ये रहमत की अलामत है, अल्लाह ताला की रहमत की अलामत है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों का नजूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। 14 अगस्त के हवाले से बात हुई है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जितने भी शोज होंगे उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड पाकिस्तान की आपसे सवाल करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप उसका 100% जवाब देंगे। मुश्किल भी सवाल होंगे और आसान भी होंगे, लेकिन यहां पर अलमिया ये है कि आसान आसान सी बातें भी हमें मालूम नहीं है। 14 अगस्त आ रही है, अभी काफी दिन बाकी हैं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान को रंग दें हरे और सफेद रंग से, भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाइए। ये हमारा मुल्क है, हम आजाद हैं इसमें, और अपने इस आजाद प्यारे से मुल्क के हवाले से अपने बच्चों को बताइए और उसके साथ साथ ये भी है कि अपने सिर्फ घर को ही नहीं साफ सुथरा प्यारा रखें, उसके साथ साथ अपने अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, उसको भी साफ सुथरा रखें, पाकिस्तान के झंडों से सजाएं। कोई छोटी मोटी एक्टिविटी जो है वो अपने मोहल्ले में, अपनी गली में उसका एहतमाम करने की कोशिश करें ताकि लगे यार 14 अगस्त है। यानी कि समझ रहे हैं ना, अब तो सिर्फ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और टेलीविजन, ये बस इसी पे नजर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही नजर आता है ज्यादा जोशो खरोश। और खैर, ये कल के शो में इस हवाले से कुछ और भी बातें करेंगे। अभी साइन आउट करना है जनाब, आपसे इजाजत भी चाहनी है, और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा हमारे दिलों में बसा हुआ कौमी नगमा जो है वो आप सबको डेडिकेट करूंगा अपनी जानिब से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल रात म्यूजिक ट्विस्टर में। अल्लाह हाफिज़।

0: put your hands up.
1: Gonna dance.
2: Come on,
3: what is
2: party?
3: You're listening to Music Musty. Music Musty.
4: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। मस्ती जारी हुई सारी है और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन मैसेजेस मैं बिल्कुल अभी नहीं पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि दूसरा और एक चार्जिंग सा ट्रैक आपके लिए लगाऊं जो आपको एनर्जाइज करे, एनर्जी से भरपूर एक और जबरदस्त गाना आपके लिए मैं पेश करने लगा हूं। लेकिन उससे पहले आपसे हम यही कहेंगे कि आप ढेर सारी फरमाइशें कर सकते हैं मुझसे, फास्ट ट्रैक्स की कर सकते हैं, 3 से 4, 4 से 5 सॉफ्ट मेलोडीज की कर सकते हैं। अपने राइट मैसेज में जाएंगे, KHI लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे, 3606 पर रवाना करेंगे। इसके साथ साथ facebook.com/RJMHFOOS पर भी आप मुझे कर सकते हैं मैसेज। मैंने अपने पिक्चर स्टेटस लगा दिया है, यहां पर आइए और छा जाइए और बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है। और ढेर सारी बातें आप मुझसे कर सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं, किसी को बर्थडे विश कर सकते हैं, शादी की मुबारकबाद दे सकते हैं, या कोई अच्छी सी बात कर सकते हैं, या खामोशी से अपना पसंदीदा गाना लिखकर भी जा सकते हैं। लेकिन आना जरूरी है, बताना जरूरी है कि आप हमें सुन रहे हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप ही की पसंद का एक और खूबसूरत सा गाना, असरार की आवाज, शक्कर भंडारे और अपिया मोसे मिलना है।

0: You are listening.
1: You are listening.
0: Music. Musti.
1: Musti.
2: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
4: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
5: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.

बैचलर्स होते हैं जो कुंवारे होते हैं उनका दोस्तों वाला संडे होता है, शाम में चाय पार्टी कोल्ड ड्रिंक ढाबे पे दोस्तों के साथ बैठना, बंद कबाब की दुकान में बैठना, कोयटा होटल पे बैठना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंतहाई पोस्ती होते हैं, उनका संडे आराम वाला संडे होता है, बस वो अपने कमरे में बैठे होते हैं, टेलीविजन देख रहे होते हैं, मोबाइल्स पे लगे होते हैं, टैब्स और क्रोम्स वगैरह, बस वो घर में ही अपना वक्त गुजारते हैं। उनके लिए चाहे वो हफ्ता हो, चाहे इतवार हो, चाहे जुम्मा हो, चाहे मंगल हो, कोई भी दिन हो, एक ही जैसा होता है। तो मुख्तलिफ लोग होते हैं जिनके मुख्तलिफ संडेज होते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि आपका संडे कौन वाला संडे होता है, आपका संडे किस तरह से गुजरता है। फैमिली वाला संडे होता है, घूमने वाला संडे होता है, काम वाला संडे होता है, दोस्त वाला संडे होता है, या आराम वाला संडे होता है। अपने राइट मैसेज में जाइए, केचाई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और लिख भेजिए हमें 3666 पर। इसके साथ साथ facebook.com/rjmehfooz। आप सबके लिए एक और खूबसूरत सा गाना सुनकर आइए और बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं।

ऑल राइट, चुके वापस आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। दोस्तों आज है संडे और संडे होता है फंडे। संडे का तो अपना ही मजा होता है और हर किसी के प्रोग्राम भी अलग अलग होते हैं संडे को। कुछ लोग होते हैं जिनका फैमिली वाला संडे होता है, सुबह देर तक सोना, फिर घर वालों के साथ नाश्ता और दोपहर में किसी रिश्तेदार के घर दावत या आपके घर में दावत हो रही होती है, बिरयानी पार्टी है। कुछ लोग होते हैं जिनका संडे होता है घूमने फिरने वाला संडे, बीच पर जाते हैं, पार्क पर जाते हैं, फिर शॉपिंग में निकल जाते हैं, शोहर है तो बेगम बच्चों को खुश रखने के लिए घूमने फिरने निकल जाता है। कुछ लोगों का संडे होता है काम वाला संडे, सारे जो हैं काम वो संडे के लिए बचा के रख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं संडे को और ज्यादा काम होता है, घर की सफाई, बाजार से सब्जी लाना और अगले हफ्ते की तैयारी वगैरह। इसके अलावा

0: You are listening. Music. Musti.
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स, और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स, और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: 100 FM।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें, और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: 100 FM।
4: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: You are listening. Music. Musti.
1: आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। दोस्तों, हर संडे दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहता है और इस साथ का खूबसूरत, यादगार, शानदार, खुशगवार आप सब बनाते हैं, अपने मैसेजेस के जरिए बनाते हैं। मैसेजेस के अलावा आप फेसबुक के जरिए बनाते हैं। इसके साथ साथ कुछ ना सही तो खामोशी से सुन के आप इस प्रोग्राम को अपना बना लेते हैं। तरीकाकार बहुत आसान है। अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए हमें 3626 पर। इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज लिखकर डायरेक्ट आप मेरे लिंक पर आ सकते हैं, मेरे पेज पे आ सकते हैं। और ना सही तो फिर अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं तो सर्च कीजिए RJ महफूज, आप मेरे पेज पे आ जाएंगे। आइए और बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है और साथ साथ वीकेंड कैसे गुजरा, हॉलीडे कैसे गुजर रहा है, या किसी की बर्थडे है, कोई और इवेंट है, या कोई और बात दिल की करनी है, कोई कोटेशन है, कोई शायरी है, कोई डेडिकेशन है, कोई विश है, तो जरूर आगे कीजिए। और साथ साथ आपको पता है कि आपने फरमाइशें सॉफ्ट मेलोडीज की करनी है, खूबसूरत से गाने होने चाहिए, चाहे वो नए दौर के हों, चाहे पुराने दौर के हों, चाहे फिल्मी हों, चाहे नॉन फिल्मी हों, चाहे गीत हो, चाहे गजल हो, हम आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। कल शाम के बाद से मौसम बड़ा सुहाना और बड़ा खूबसूरत और बड़ा हसीन हो चुका है। हल्की हल्की फुहार भी है और साथ साथ कुछ जगहों पर शायद बारिश भी है। बारिश का मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश हुई नहीं है अभी, लेकिन फुहार है। और पिछले दिनों, पिछले वीक में, यानी जुम्मे तक भी ठीक ठाक गर्मी थी। इवन ये कि सैटरडे में 12-1 बजे तक तो बहुत ज्यादा हफ्सा, बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन 3-4 बजे के बाद मौसम ने रुख बदला, मौसम पलटा और उसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। खूबसूरत सा मौसम, फुहार वाला मौसम। और ऐसे मौसम में अगर हम ये वाला गाना आपके लिए प्ले करें, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने।

0: You are listening. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
1: क्या वर्जिया है मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने। अच्छा अच्छा मौसम जो होता है उसका दिलो दिमाग पे बड़ा गहरा असर होता है, सोच पे बड़ा गहरा असर होता है, आपके मूड पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। गर्मी पड़ रही हो उसके बाद, गर्मी के बाद अचानक अब आ जाए ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, फुहार होने लगे और पूरा मौसम चेंज हो जाए तो शहर का और शहरियों का मूड चेंज हो जाता है। लोग बाहर निकल जाते हैं, चाय के होटल्स पे रश बढ़ जाता है, समोसे जलेबियों के होटल्स पे इनकी दुकानों पे रश बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं और मूड बड़ा जबरदस्त हो जाता है। आप इस मौसम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। अगर आप अपने घर बैठे करना है तो अपने घर की खिड़की खोल सकते हैं, दरवाजा खोल सकते हैं, ठंडी हवा को अंदर आने दे सकते हैं। ठंडी ठंडी जब हवा लगती है दिमाग पर आया है, मजा आ जाता है। इसके अलावा आप चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं या वॉक करने बाहर जा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। तो मौसम के साथ इन तमाम चीजों को जोड़कर आप अपने मौसम को दुबारा कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, आप जो मोबाइल है वो मत यूज करें। इसके मोबाइल देखने के बजाय अगर आप आसमान को देखें, कुदरत के नजारे करें, तो यकीन मानिए आपका मूड जो है बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, आपको मजा आएगा इस खूबसूरत से मौसम का। अपने अंदर आप तब्दीली महसूस करेंगे, आपकी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, इरिटेशंस हैं, जो भी आपकी झुंझलाहट है, परेशानी है, वो काफी हद तक आपकी खत्म हो जाएगी। ये हसीन सा मौसम आपको चिल कर देगा। तो अच्छे से मौसम का फायदा उठाइए, अपने मूड को अच्छा कीजिए और साथ साथ मूड को अच्छा करने के लिए सुनिए एफएम 100 पाकिस्तान। हम आपको जबरदस्त से गाने सुनवा रहे हैं और साथ साथ आपसे बातचीत भी कर रहे हैं और आपसे यह भी कहते हैं कि अपने राइट मैसेज में जाइए, के एच आई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3666 पर। इसके साथ साथ facebook.com/RJMFUS पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या सुनना है। हम आपके लिए यहां पर मौजूद हैं सॉफ्ट मेलोडीज, बहुत ही खूबसूरत से गाने, वो गाने जिनकी पोइट्री बड़ी जबरदस्त है, मेलोडीज बहुत अच्छी हैं, आवाजें बहुत अच्छी हैं और आपको हम चिल करेंगे। हम चाहते हैं कि जब आपके हाथ में चाय का एक कप हो और साथ साथ ये मीठे मीठे गाने हों, तभी चाय में शुगर की जरूरत नहीं, फीकी चाय बनाइए और ये गाने सुनिए और चाय खुद ही मीठी हो जाएगी।

मेहरू हमें मैसेज करी है, सलाम करी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर ली है। नाज हमें सुन ली है, नाज बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी हमने फरमाइश नोट कर ली है। हैदर अली हमें सुन रहे हैं, हैदर अली वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। आरिफा हमें सुन रही है, आरिफा बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी हमने फरमाइश नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे हम। नौरीन हमें सुन रही है, नौरीन बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, और आसमा फरीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम। आप सबकी फरमाइशें हम पूरी कर रहे हैं, साथ साथ जबरदस्त से गाने आप हमसे सुन रहे हैं और हम यकीनन आपको गाने सुनवा रहे हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की हम नज़र करेंगे और आप ही की फरमाइश है, आप की तरफ हम रवाना करते हैं। ये जो हल्का हल्का सुर है, तेरी नजर का कसूर है।

0: It's time to turn up the volume and kick the boredom out the door. This is FM 100 Pakistan.
1: You are listening to Music Masti.
2: जी मेरे दोस्तों, अब वक्त आन पहुंचा है कि हम आपसे इजाजत चाहें, आपसे अलविदा कहें और आपको अलविदा कहें, आपसे अल्लाह हाफिज कहें और आपको ढेर सारी दुआओं में याद रखें, आप भी हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए, या नहीं भी किया आपने, खामोशी से हमें सुना, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आज संडे वाले दिन हम आपके साथ मौजूद थे दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और हमने आपको एंटरटेन किया और आपने इसमें अपना भरपूर पार्टिसिपेशन दिया, आपने भरपूर मेरा साथ दिया, आपने मैसेजेस किए 3646 पर, आपने फेसबुक पे मैसेजेस किए और बताया कि आप सुन रहे हैं और साथ साथ आपने पसंदीदगी का इजहार भी किया। साल साल से हम आपके साथ मौजूद रहते हैं और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से मौजूद रहेंगे। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए और आपकी तरफ से हमारे लिए। आखिरी का गाना लगाने से पहले आपसे इजाजत लेना है मुझे। जहां रहे खुश रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, दूसरों को रखे खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का, अपने परचम का करें एहतराम, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, महफूज को एफएम 100 पाकिस्तान को रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर जरूर जरूर याद। अगर आपका वालिदैन हयात हैं, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि यही आपकी जन्नत का जरिया है। मेहरबान हो कि बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे यानी अगले इतवार को दोपहर 3 बजे। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम आपकी समातों की नजर करेंगे और आपसे इजाजत चाहेंगे। Thank you so much. Bye-bye. Take care and finally, Allah Hafiz.

0: This program is brought to you by
1: इस जश्न-ए-आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL एंड
2: कैडिलैक
0: एंड
3: फिनिक्स लगा और भूल जा
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे होशियार रहें मोहतात रहें अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें हुंडी हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है याद रखें दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है हुकूमत पाकिस्तान
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
6: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: anything?
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
3: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: This program is brought to you by
5: Is Jashn-e Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan.
2: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: Brand new Suzuki Alto जीतना चाहते हैं? बस अपने Easy Paisa account में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 Suzuki Alto या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का? अभी डिपॉजिट करें और जीतें। Easy Paisa Digital Bank, Easy वाला बैंक।
0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
2: 100 FM.
3: Chum chum chum, kitabe leke nikle hum. Ammi ne kaha na rukna tum, roz roz aage.

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
2: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
7: FM 247 365.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: खालिस अज्जा, भरोसे मन शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है.
5: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में ₹15,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा ₹5,00,000 तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी परसेंट इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। We make learning fun from primary years education through STEAM approach. ताकि आपका बच्चा develop कर सके strong science, technology, engineering, art and mathematics skills. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?

0: This program is brought to you by
1: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL

0: ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: This program is brought to you by
5: Is Chashne Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan
1: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी इयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स। Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
5: किसने कहा था पैसे बचा।

It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: PTCL Flash Fiber आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: This program is brought to you by
5: Is Jashn-e Azadi Fatma Fertilizer ke saath milkar buland kare apne shehar ki shaan
0: and HBL Freedom Account. Jahan khwab wahan HBL and
6: Candyland.
0: And
7: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: 100 FM.
9: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
10: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
11: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।

0: दो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
2: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai? Ab jang maidan-e-jang mein nahi, hamare zehnon mein ladi ja rahi hai. Ab dushman ki goliyan barood nahi, malumat hai. और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: आजान मगरिब पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची और उसके मजाफात में अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: PTCL Flash Fiber Azadi offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू हैं।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: Kisne kaha tha paise?

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: PTCL Flash Fiber Azadi Offer लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं Free Shock Android TV Box worth ₹15,000, Free 100 Mbps Internet Speed 6 महीने के लिए, 500 All Net Minutes और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। Call 1218 या UPTCL App डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। Terms and Conditions Apply, शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतलका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या?
6: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
9: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
8: अभी इसी वक्त
10: अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
6: आइए वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइन जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
10: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
12: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aise offers ab kahan?
5: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त सवाबित लागू हैं।
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहां?
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. Assalamu alaikum, Pakistan.
7: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्ने आजादी मुबारक.
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
5: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all-net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. शर्तें सवाबित लागू हैं.
4: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. और नई गाड़ी? सिर्फ स्कूल शूज पर. ऐसी ऑफर्स अब कहां?
6: 100 FM.
7: चम चम चम किताबें लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: PDCL Flash Fiber आजादी ऑफर लगाए सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए, हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Us on facebook.com/FM247365

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain.
3: 100 FM.
4: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाव, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीजिए।
6: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रुजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफातशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफातशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतल्लिका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विस سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی وی.
7: facebook.com/fm247365
8: back to back, back to back, only music, no RJ talk,
9: only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

0: It's not just music, it's an addiction. FM 100.
1: FM 100's time check. It's 10 p.m.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPDCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to zawabit lagu hai.
6: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.
8: FM 100.
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
8: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
4: facebook.com/fm247365 fm247365

पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मुमार हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वह है मुनशियात का बेदरेज। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार कर रहे हैं। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स एएनएल वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में सरगर्म नजर आती है, ताकि हमारे नौजवानों की हिफाजत और उनको बाइख्तियार बनाया जा सके। एएनएल ये जंग मुसलसल लड़ रही है। मोहल्लों में सड़कों पर

0: स्टेशन पर। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ है। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365
3: FM 247365

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 p.m.
1: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शराइत सवाबित लागू हैं।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहां?
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf rupees 4,999 mein. Aur paaye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शरायत जवाबित लागू हैं।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365

बादशाह, जहर देख के पीता देखी पीता, इश्क सोच के गीता देखी गीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी, वे बुलिया

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.